मर गए। माम ची गर्मी बार आया मिन्नत गर्मी दिखे माम अगर दुखा दर समाए।